लबे लगुबरी बोसले पाती इना कबारे की बुलू बिगाबिले पाती इगरा बे लगुबरी बोसले पाती इना कमारी की बुलू बिगाबिले कसामे के बे पाती तिगा मारे लीड मेरे हरी पाती तेरो माँ बिना है तो हमारा जीना आई मेरी गाना चले थी इरानी लोग।